0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा, खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर,
6: आपकी जिंदगी में।
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
6: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: मैसेज डाले थे भी, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, आप कैसे हैं? मैं बहुत जबरदस्त हूँ, आप बताएं, आप ठीक है, खैरियत से हैं? बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई, बहुत शुक्रिया जी, आपको भी ईद बहुत बहुत मुबारक, जो गुजरा हुआ ईद है आपको बहुत बहुत मुबारक, ठीक है जी। एनी वे कॉल तरफ से उनके शौक दिया वो रकम देने दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, रेडियो बुलाओं ने मिला कॉल बस मिला खुदा देता सुलाबाद की। एनी वे जनाब मैसेज गुड हूँ शो आवर मैं डेरे से मन न कहूँ आई थिंक दा मायरे शिराज दी दादा हूँ मैसेज के महाल डेरे से मन ना सासू डेरे मन न कहूँ सासुदा महाल जम का प्रोग्राम गाऊ रही पार्टिसिपेशन ची दिया गाऊ मैं कभी कॉल तरफ जुकूर हूँ हम उस बिल कॉल का उनकी सुख दिया कम से ना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब, ये सुख कम से ना खैर मुबारक जी। कम अख्तर अख्तर खुद ले सही था तेरशी भी अख्तर देता मुबारक तेरशी भी अख्तर दूँ बताओ डेढ़ डेढ़ मुबारक शी बस वो खोड़ ले दी खा
1: शाहजान
0: सर क्रिकेट सर शौक दे बैटिंग के बॉलिंग के
1: बैटिंग के
0: नो खे तरफ था बैटिंग के गज तरफ था
1: खे तरफ था
0: क्या ना कम खिलाड़ी कम खिलाड़ी दे फक दे
1: खिलाड़ी
0: बाबर आजम दावले दावले सही था डेरे से मन कहूँ जो के बेल हाफिज बिल्कुल जी ना डाउन सर हो कॉलर चुनते प्रो की कॉल को डेरे से मन ने कहूँ चप्पल मीन सर शरीक गड़ोला अख्तर हवाले सर रिलेटेड अपडेट सर शरीक कहूल भाई दबे डेरे से मन ने कहूँ अख्तर खो चुके तेर शिवे दे इन वजह से कमेंट्स गुरु सैयद शबीर अहमद शिराजी सलाम की सलाम अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम ईद मुबारक हो बहुत शुक्रिया जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो आरिफ आसिफ अहमद सलाम रेडी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम नदीन अलावा हैदर अफरीदी अभी मुदावाई चिल्वी अख्तर दी मुबारक शाह खैर मुबारक जी हैदर अफरीदे चर तक आई बेमड़ा पता देने लगी क्या चर तक आए भी है डेर वक्त बाद आसासो कमेंट सीधे का राग ले दर तो वो एक कुर की एक ना दा महाल जॉब मन दिए अदा हिदर अफरीदी ने दीदी हर प्रोग्राम के चीज आप कॉल्स वगैरह कवले कराची ने मैं कॉल कवले आयु का गाज कहते जिन्हें डी जात में मिस कहो नो हिदर अफरीदी आयु का कहता सो डी जात में मिस कही हाँ नो बस आहो जी अगे तो पार राजा हाँ कहना अगे तो पार अगे तो राजे कहना मना शो तो खुराजे कल न कल मना।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई
2: रेडियो अमन नेटवर्क, रेडियो
3: अमन नेटवर्क, पैगाम अमन है, अमन
4: है, प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बतें समेट कर,
6: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में,
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।